0: तुझे तू जल गई, आँख खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई, वो धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा पता।
1: दिल से ब्रेक के

0: रुक जा रुक जा ना सुन तू ना
1: ऐसे बन रहा है जैसे कोई सप है मैं
0: बदला
1: ना
0: सुन तू ना सुन तू यू कैन डू।

सुन टीवी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, जब भी फ्लोर पे तेरी बेट में हूँ खड़ा, ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के बगा।